चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत, देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री

ना सकत के अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिज तेर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिण कहत तो सर्ब नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत शतर गुर राम दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैण सोत अपराध करत है जेते जननी चीतना राखस तेते

चिंत पवन मन परियो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित बहु अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत।

कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिर सहांदे

जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, नेह चल राज कमाओ। जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, नेह चल राज कमाओ। तुम घर आवहो मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, आपदा भई बतीत। रहाओ प्रागट कीने प्रभ करने हारे, नासन भाजन थाके। घर मंगल वाजह नित वाजे, अपने खासम निवाजे। आस थिर रहो डोलोह मत कबहू, गोर कै बचन आधार। जय जयकार सगल भूमंडल, मुख उजल दरबार।

अचरज किया करण हार, नानक सच वडियाई। जिन के जी तिन ही फेरे, आपे भया सहाई। अचरज किया करण हार, नानक सच वडियाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पांजवा, जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन,

रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया मेल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चित वह उदम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रिजक आगै कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता कोए न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मान पाओ करिया। ऊडे ऊडे आवै सै कोसा तिस पाछ बचरे छरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया। सब निदान दास अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा। सब निदान दास अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमे अपारा। सब ते आवह सब ते आवह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर ते आवह संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज बिडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर ते आवह हर ते आवह तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त से मुक्त भए जिन हर ते आया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ ते आया जी तिन का भउ सब गवासी। जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर ते आया जी जन नानक तिन बल जासी।
तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करहे हर पूजा जी ताप ताप है जपहे बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड़े अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई तुद आपे भाव सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ पावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिस नौ कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल जिस नौ तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणै जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहज ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ भई ले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चल हम देखा तह डूबी अले मान एक न चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हौ जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी सरना जेन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्रापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साधु संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जा।

मां शरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोस्त सवै तुम कावहु आप हाथ दे मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन कवाज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरन काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तो जू करी हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो वध कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पार कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना काट काट के पट पट की जाना जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप आपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव

नत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपने बुद्ध है जेते वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लख ना जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कहे पूपा अंडज जेरज से तज कीने उत्पुज खान बाहुर राच दीने कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवात उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तोज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आ है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहें हम एक ना जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो तागावह हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटा हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुध वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुध जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ

मस्तक रख्या पार ब्रह्मं, हस्त पाया रख्या परमेश्वर, आत्म रख्या गोपाल स्वामी, तन चरण रख्या

राग कानड़ा महला चौथा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख नृपौ निर्वैर अकाल मूर्त

कहो टल गुर सेविया अहन सुसहजो दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवा सिफत खसाम नूर अरसह कुरसह तुदृठे सचे पातशाह जन्म जन्म दी सजण सचा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजण सचा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पंजवा जतन कर मान खुदहकावा ओह अंतर जामी जान पाप करी कर मुकर पावा पेख कर निर्वाण जतन कर मान खुदह कावा ओह अंतर जामी जान पाप करे कर मुकर पावा पेह कर निर्वाण जानत दूर तुम्हें प्रभ नेरा उत तक उत ते उत पेखा आवै लोभी फेरा रहा जब लग टुटा नाही मन भरमा तब लग मुकत ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई जब लग टुटा नाही मन भरमा तब लग मुकत ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जान सोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर है।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सपहु गुर प्रसाद आसम।

पौड़ी अपनी आप साजी अपन रचोना दोई कुदरत साजी एक रासन ठोचा दाता करता आप तू तुस देवे करे पसा तू जानो ही सबसे दे लैसे जिंद को आओ।

पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे धर्म बहलिया उत्ते सच्चे ही सच ने बड़े जुन वाकड़े जमा लिया हावना पाइन कूड़ यार मोह काले दोज बिचा लिया तेरे नायर तैसे जिन गए हार गए से ठगन वाले आ।

पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन सचों सच ते आया उन्हें मंदे पैन रखियो कर सुकरे तर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधनान पानी थोड़ा खाया तू

0: जग मैं परवर निरंकार आकार जो जग मंडल करो जय कहते हैं भरपूर शब्द दीपक दीपायो जय सिखे संग रहो तत् हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरियो अंगद लैने संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो जप तप सत संतोख बिख दर्शन गुरसिख शरण परे ते उबरे चोर जंपर की लिखे भगत पाए भरपूर हृदय चरे करतार गुरु गौर दरियाओ पलक डुबंते तार नानक कुल निमल अवतरियो गुण करतार उचरे गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र पर हर पर
1: चित चितवो अरदा।

जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं। गुरु अमरदास कारण करना।

खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने पव सागर बंदेओ सिक तारै सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जो

भगत अगाने, गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने। एहो राज जोग गुर रामदास,

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा विसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा विसाहु।